0: दोस्तों साथी आपको स्वागत करते हैं जलसा फिजी रेडियो के 702 एपिसोड में। मैं हूँ प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश और आज पैनल में हमारे साथ देने वाले हैं साहिल। और जब हम लाइव जाएंगे फेसबुक पे तो हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं निको हु इज गोइंग टू हेल्प अस विद वीडियोग्राफी। और साथ साथ के आपको ये भी बता दें जैसे हर वीडियो में हमारे साथ कोई ना कोई ज्वाइन हो जाता है एज अ गेस्ट एंड टुडे वी हैव आवर गेस्ट लुलू ऑल द वे फ्रॉम चाइना। सो हम उनसे बात करेंगे एंड वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू थिंग्स अबाउट चाइना एज वेल विच विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। और अगर देखा जाए स्पोर्ट्स की दुनिया में देन दैट्स व्हाट्स हैपनिंग नाउ। अभी एक गेम जो चल रहा है बिटवीन क्रुसेडर्स एंड ब्लूज, तो हमारे साथ है साहिल एंड ही माइट वांट टू टेल अस क्या हो रहा है। और अभी सेवंस भी चल रहा है जिसमें फिजी हैड वन ऑल द पूल गेम्स, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लास्ट वन डिडंट वर्क आउट दैट वेल फॉर फिजी। और भी काफ़ी जो गेम्स चल रहा है देखते हैं कि साहिल के पास कितने समाचार हमारे हमें बताने के लिए बिफोर वी गो हेड विद आवर इंटरव्यू।
1: जी हाँ, एंड क्रुसेडर्स एंड ब्लूज लाइव अभी चल रहा है
0: जी।
1: स्टार्टिंग में विद इन फर्स्ट 8 मिनट्स ब्लूज स्कोर अ ट्राई, सो इट वाज 7-0 एंड अभी इट्स 14-7 क्रुसेडर्स विनिंग।
0: Oh, Crusaders is winning.
1: Yes, and 21 minutes.
0: Yeah, और काफी इंटरेस्टिंग था ना ये जो टी कहा जो स्टेडियम है, इट्स क्वाइट गुड न्यूज़ फॉर क्राइस्टचर्च बिकॉज़ एवरी टाइम यहाँ पे जो शो होता है इट्स ऑलमोस्ट लाइक फुल हाउस
1: एंड फुल हाउस। अभी ये गेम फर्स्ट 20 मिनट्स में सोल्ड आउट।
0: एग्जैक्टली,
1: एंड नॉट जस्ट दिस गेम, अभी तक जितना भी इवेंट्स स्टेडियम में हुआ है एवरी इवेंट हैज सोल्ड आउट विद इन द फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स।
0: Yeah, and it's quite good as well.
1: Because you know what was a surprising bit? I think on 12th next month, France are always a game happen.
0: Yeah.
1: And that game sold out. Jab unhone announce kiya, I went online to look for the ticket.

0: और टिकट अवेलेबल नहीं था ना, सो आई थॉट इट हैजंट बीन रिलीज्ड येट. एंड देन थोड़ा देरी में मैसेज आता है, इट हैज बीन सोल्ड आउट.
1: वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग. जी हाँ, काफी काफी अच्छी बात है. बट एक्चुअली आई एम ग्लैड कि सोल्ड आउट हो जाता है, बिकॉज अगर नहीं सोल्ड आउट होगा देन आई वोंट हैव पीपल इन द स्टूडियो टुडे. आप नहीं रहोगे, यू नो, निको एंड लुलु वोंट बी हियर बिकॉज देयर बी
0: इन द स्टूडियो
1: एंड आई एम सिटिंग हियर. इट्स गुड फॉर मी.
0: नो, एक्चुअली इफ वी वर नॉट हियर वी वुड हैव बीन डूइंग दिस शो लाइव फ्रॉम द स्टेज.
1: दैट्स द अदर थिंग. जी हाँ, सो चलो हम हमेशा की तरह व्हाट वी विल डू इज वी विल प्ले अ सॉन्ग, बिकॉज अदरवाइज हमारे पास शायद कम समय ना हो ये जो सॉन्ग प्ले करने के लिए. एंड आफ्टर द सॉन्ग देन वी विल गेट ऑन विथ अवर इंटरव्यू. लुलु इज हियर प्रिपेयर्ड विथ ऑल द न्यूज फ्रॉम चाइना एंड शी इज प्रीटी एक्साइटेड, सो वी विल बी टॉकिंग टू हर आफ्टर द सॉन्ग.